420, 420, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? हमने उन्हें ढूंढ लिया है। मैं फिर दोहराता हूँ, हमने उन्हें ढूंढ लिया है। 520, 520।